सेटेलाइट और इंटरनेट पर सुन सकते हैं। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu। उर्दू नशरियात का आगाज़ हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655

किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 26 अगस्त बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला जैन और वायला खवानों से सुने समाचार। एक अमेरिकी मीडिया केंद्र एक्सियोस के अनुसार विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में कई सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों को बताया कि फिलहाल अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू करने की कोई संभावना नहीं है। एक्सियोस ने मंगलवार को एक अमेरिकी अधिकारी और एक अन्य स्रोत के हवाले से यह खबर दी। यह खबर ऐसे समय आई है जब अमेरिका ने सोमवार को ईरान के खिलाफ व्यापक आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की। ऐसा लगता है कि अब अमेरिका ईरान पर सैन्य हमलों की बजाय आर्थिक दबाव बढ़ाने जा रहा है। एक्सियोस की खबर के अनुसार रूबियो ने संकेत दिया है कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाजों पर अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी के साथ साथ नए प्रतिबंधों के माध्यम से ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। खबर में एक अन्य अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि यह नीति कम से कम नवंबर में होने वाले अमरीकी मध्यावधि चुनावों के बाद तक जारी रहने की उम्मीद है, जिसके बाद एक नए सैन्य अभियान पर फिर से विचार किया जा सकता है। खबर में कहा गया है कि यह एक और संकेत है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध से तंग आ चुके हैं और चाहते हैं कि यह कम से कम अभी के लिए समाप्त हो जाए। इस बीच इसमें यह भी कहा गया है कि अगर ईरान पहले हमला करता है तो रूबियो ने हमले की संभावना से इनकार नहीं किया है। जापान के कुछ हिस्सों में बुधवार को भी भीषण गर्मी रही। फुकुओका प्रिफेक्चर में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। फुकुओका हवाई अड्डे पर तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस था। पश्चिमी जापान के कई अन्य स्थानों पर भी तापमान 39 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। जुलाई के अंत में आए शक्तिशाली भूकंप से उबरने की कोशिश कर रहे कुमामोतो प्रिफेक्चर के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी रही। यात्सुशिरो शहर में दिन का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री और कुमामोतो शहर में 38.9 डिग्री रहा। बुधवार को जापान के 47 में से 37 प्रिफेक्चरों में तापघात की चेतावनी जारी की गई। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक का सेवन करना चाहिए। तूफान सोदेल जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों अमामी और ओकिनावा से दूर जा रहा है, लेकिन तूफान का असर लंबे समय तक देखा जा सकता है। भारी वर्षा के कारण निचले इलाकों में भूस्खलन, बाढ़ और नदियों में उफान सहित ऊंची लहरों और तेज हवाओं से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ऐसा लगता है कि अमामी और ओकिनावा तूफान के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में अब भी वर्षा बादल छाए हुए हैं। बृहस्पतिवार दोपहर तक के 24 घंटों में ओकिनावा प्रिफेक्चर में अधिकतम 120 मिलीमीटर और कागुशिमा प्रिफेक्चर के अमामी क्षेत्र में 100 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। प्रचंड हवाओं की भी आशंका है। अमामी और ओकिनावा क्षेत्रों में हवाओं की अधिकतम गति 83 किलोमीटर प्रति घंटा और हवाओं के झोंकों की रफ्तार 126 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की आशंका है। ओकिनावा प्रिफेक्चर में लहरों की ऊंचाई 7 मीटर और अमामी क्षेत्र में 6 मीटर तक होने की आशंका है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जापान सरकार ने बुधवार को नई योजनाओं का एक पैकेज तैयार किया। इन योजनाओं में एक वैकल्पिक पाइपलाइन के निर्माण के लिए सहायता कार्यक्रम शामिल किया गया है, जिससे जापान को हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजरने की बजाय नए रास्ते से कच्चे तेल की खरीद करने में मदद मिलेगी। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाई ने जून में पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए ऊर्जा सुरक्षा हेतु योजनाओं का एक व्यापक पैकेज तैयार करने के लिए सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया था। पाइपलाइन निर्माण के लिए सहायता कार्यक्रम के अलावा सरकार कच्चे तेल के भंडार के लिए एक पहल शुरू करने की भी योजना बना रही है, जिसका उपयोग नेफ्ता के उत्पादन के लिए किया जाएगा। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के तहत सरकार परमाणु ऊर्जा का अधिकतम उपयोग और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा सरकार अगली पीढ़ी के पतले और लचीले पेरोवस्काइट सौर ऊर्जा सेल, भूताप और अक्षय ऊर्जा के अन्य स्रोतों के लिए औद्योगिक आधार तैयार करेगी। सरकार डेटा केंद्रों में बिजली की बढ़ती मांग से निपटने के लिए ऊर्जा कुशल चिप्स पर भी शोध को बढ़ावा देगी। सरकार पावर एशिया पहल के ढांचे के माध्यम से तेल भंडार को बढ़ाने के लिए अन्य देशों से विस्तारित सहयोग का आह्वान करेगी। गौरतलब है कि पावर एशिया पहल के तहत एशियाई और अन्य देशों को वित्तीय सहायता दी जाती है। जापान सरकार किसानों और मछुआरों को नकद सहायता देने पर विचार कर रही है, ताकि उनके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों पर उपभोग कर में कमी के प्रभाव को कम किया जा सके। सरकार ने अगले साल अप्रैल से 2 वर्ष के लिए खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर को घटाकर 1% करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में उपभोग कर की दर आमतौर पर 10% है, लेकिन खाद्य और पेय पदार्थों पर ये 8% है। सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वो प्रभावित किसानों और मछुआरों को उनके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले उपभोग कर की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना बना रही है। सर्वदलीय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा परिषद ने चिंता व्यक्त की थी कि कृषि और मत्स्य पालन में लगी छोटी व मझौली कंपनियों को बढ़ते वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण ये है कि उन्हें उपकरण और अन्य सामग्री की खरीद पर पहले की तरह ही 10% उपभोग कर का भुगतान करना होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि वो रेस्तराओं पर कर कटौती के प्रभावों पर नजर रखेगी। बाहर खाना खाने पर उपभोग कर 10% ही रहेगा, लेकिन टेकआउट पर इसे घटाकर 1% कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि वो रेस्तराओं को उत्पादकता बढ़ाने और टेकआउट सुविधा प्रदान करने में मदद करने पर विचार करेगी। अधिकारी आगामी महीनों में इसकी बारीकियों पर काम करेंगे, ताकि इसे अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष के बजट के मसौदे में शामिल किया जा सके।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीकी मीडिया केंद्र एक्सियोस के अनुसार विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में बताया कि फिलहाल अमरीका द्वारा ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू करने की कोई संभावना नहीं है। और जापान के कुछ हिस्सों में बुधवार को भी भीषण गर्मी रही। फुकुओका प्रीफेक्चर में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। और इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 26वें

0: पाठ में किसी चीज की कई विशेषताएं एक साथ बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस के निवासियों मिया और काइतो और मकान मालकिन हारू जी के साथ ओहानामी करने एक उद्यान में आई है।
0: जापान के लोग वसंत ऋतु में खूबसूरत गुलाबी चेरी के फूल यानी साकुरा देखने उद्यानों में जाते हैं। इस प्रथा को ओहानामी कहते हैं। लोग पेड़ों तले टहलते हैं, उनके नीचे बैठकर खाते पीते हैं। ताम भी अपने दोस्तों के साथ चेरी के एक पेड़ के नीचे दरी बिछाकर बैठी है।
1: तो आइए सुनते हैं 26वें पाठ की बातचीत।
2: ओ बेंटो दा यो, बुकु गा त्सुकुत्तान दा, दोज़ो।
3: किरे, सुगोई, इतादाकिमास। कोनो तमागो याकी, अमाकुते ओइशी देस।
4: काइतो वा, होंतो नी ल्योरी गा जोज़ु दा ने।
2: बुकु, शेफ नी नारितै इन दा।
4: ई ने।
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: काइतो ने खाने के डिब्बे निकालकर दरी के बीच में रखते हुए कहा,
2: ओ बेंटो दा यो।
0: ये हैं खाने के डिब्बे।
2: बुकु गा त्सुकुत्तान दा, दोज़ो।
0: मैंने बनाए हैं, लो।
1: मिया रंग बिरंगा खाने का डिब्बा देखकर बहुत प्रभावित हो गई। उसने कहा,
3: किरे,
1: कितना सुंदर है।
0: ताम ने भी प्रशंसा की,
3: सुगोई,
1: वाह।
3: इतादाकिमास,
1: शुक्रिया।
0: फिर ताम ने जापानी ऑमलेट से शुरुआत की।
3: कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
1: ये जापानी ऑमलेट मीठा और स्वादिष्ट है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
4: काइतो वा होंतो नी ल्योरी गा जोज़ु दा ने।
1: काइतो, तुम सचमुच बहुत अच्छा खाना पकाते हो।
0: तो काइतो ने जवाब दिया,
2: बुकु शेफ नी नारितै इन दा।
0: मैं शेफ बनना चाहता हूँ।
1: ये सुनकर मिया ने कहा,
4: ई ने,
1: ये तो अच्छी बात है।
0: लगता है काइतो बहुत प्रतिभाशाली है।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस,
1: यानी ये जापानी ऑमलेट मीठा और स्वादिष्ट है। ये वाक्य सीखकर आप किसी चीज की कई विशेषताएं एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: कोनो तमागो याकी
0: का अर्थ है ये जापानी ऑमलेट।
5: तमागो याकी
0: का मतलब है जापानी ऑमलेट और ये खाने के डिब्बे में शामिल किया जाने वाला एक आम व्यंजन है।
1: इसे बनाने के लिए अंडों को जायकेदार रसे और चीनी के साथ फेंटते हैं और पके हुए अंडे की पतली परतों को लपेटकर मोटा और नर्म ऑमलेट तैयार करते हैं।
5: अमाकुते
0: बना है ई विशेषण
5: अमाई
0: से, जिसका अर्थ है मीठा, और
5: ओइशी
0: का मतलब है स्वादिष्ट।
1: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी चीज की विशेषताएं बताने के लिए दो या अधिक विशेषणों को जोड़ सकते हैं। अगर आज के मुख्य वाक्य की तरह पहला विशेषण ई विशेषण हो तो उसके अंत में लगे ई को हटाकर
5: कुते
1: लगाते हैं और उसके बाद अगला विशेषण जोड़ते हैं।
0: जैसे इस वाक्य में अमाई से बना है
5: अमाकुते
0: और उसके बाद लगा है
5: ओइशी,
0: तो बन गया
5: अमाकुते ओइशी।
1: तो सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: अमाकुते ओइशी देस। कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला किसी उद्यान के बारे में अपने विचार बता रही है।
6: ueno kouen dou deshita ka?
7: hirokute kirei de totemo yokatta desu।
1: अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले पुरुष ने पूछा,
6: ueno kouen dou deshita ka?
0: ueno park कैसा लगा?
1: यहाँ
5: ueno kouen
1: का अर्थ है ueno park। ये उद्यान टोक्यो में है और बहुत बड़ा है।
5: dou deshita ka
1: का मतलब है कैसा लगा। ये किसी पुरानी बात के बारे में विचार पूछने का तरीका है।
0: महिला ने उत्तर दिया,
7: हिरोकुते किरेई दे, तोतेमो योकात्ता दे।

0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको बिल्ली की प्यारी सी मूर्ति उपहार में मिली है। आप बोलना चाहते हैं कि वो छोटी और प्यारी है। छोटी को जापानी भाषा में कहेंगे
1: चीसाई
0: और प्यारी को
1: कवाई।
0: वाक्य के अंत में ने लगाकर आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की आशा कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए।
2: चीसकते कवाई देसने।
3: अब मान लीजिए किसी ने जापान की रेल सेवा के बारे में आपकी राय पूछी है। आप कहना चाहते हैं कि जापानी रेलगाड़ियां समय की पाबंद और सुविधाजनक हैं। समय की पाबंद कहने के लिए जापानी शब्द है
1: सेकाकुना
3: और सुविधाजनक के लिए जापानी शब्द है
1: बेंडीना।
3: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: せっかくで便利ですね।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो काइतो की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
5: दोज़ो।
3: आज के पाठ में
1: दोज़ो
3: का मतलब है लो। इस शब्द का कई तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, जैसे किसी को खाने की चीज देते समय या कुछ करने की अनुमति देने के लिए। कोई चीज पकड़ाते समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
0: तो सुनिए और दोहराइए।
1: दोज़ो।
3: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
2: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
6: カイトは本当に料理が上手だね。
5: 僕、シェフになりたいんだ。
6: いいね。
7: ハルさんの知恵袋。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश, हारू जी की सलाह। आज हम बताएंगे ओहानामी यानी चेरी के फूल निहारने की प्रथा के बारे में।
3: जापान में चेरी के फूल यानी साकुरा लगभग मार्च से मई के महीने तक जापान के दक्षिण से लेकर उत्तर की दिशा में खिलते हैं।
0: लोग ये जानने के लिए मौसम पूर्वानुमान सुनते रहते हैं कि ये फूल कब कहाँ खिल रहे हैं और कितने प्रतिशत खिल चुके हैं। उस जानकारी के आधार पर लोग ओहानामी करने की योजना बनाते हैं।
3: ओहानामी के लिए लोग अपने घर के पास के बाग बगीचों में या सड़क किनारे लगे चेरी के पेड़ देखने तो जाते ही हैं। साथ ही इन फूलों के लिए प्रसिद्ध दूर के क्षेत्रों में जाने वाले लोग भी कम नहीं है।
0: उएनो पार्क और शिंजुकु ग्योएन राष्ट्रीय बाग ओहानामी के लिए टोक्यो के लोकप्रिय स्थलों में से हैं। इसके अलावा सुमिदा नदी और मेगुरो नदी के किनारे लगे पेड़ भी बहुत सारे लोगों को आकर्षित करते हैं।
3: कई जगहों पर रात में पेड़ों पर लाइटें भी लगाई जाती हैं, जिससे रात को भी ओहानामी का आनंद लिया जा सके।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
3: अगले पाठ में ताम रामेन नूडल्स की एक लोकप्रिय दुकान में जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 26 अगस्त बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला जैन और वायला कवानो से सुने समाचार। एक अमेरिकी मीडिया केंद्र एक्सियोस के अनुसार विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में कई सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों को बताया कि फिलहाल अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू करने की कोई संभावना नहीं है। एक्सियोस ने मंगलवार को एक अमेरिकी अधिकारी और एक अन्य स्रोत के हवाले से यह खबर दी। यह खबर ऐसे समय आई है जब अमेरिका ने सोमवार को ईरान के खिलाफ व्यापक आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की। ऐसा लगता है कि अब अमेरिका ईरान पर सैन्य हमलों की बजाय आर्थिक दबाव बढ़ाने जा रहा है। एक्सियोस की खबर के अनुसार रूबियो ने संकेत दिया है कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाजों पर अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी के साथ साथ नए प्रतिबंधों के माध्यम से ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। खबर में एक अन्य अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ये नीति कम से कम नवंबर में होने वाले अमरीकी मध्यावधि चुनावों के बाद तक जारी रहने की उम्मीद है, जिसके बाद एक नए सैन्य अभियान पर फिर से विचार किया जा सकता है। खबर में कहा गया है कि यह एक और संकेत है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध से तंग आ चुके हैं और चाहते हैं कि यह कम से कम अभी के लिए समाप्त हो जाए। इस बीच इसमें यह भी कहा गया है कि अगर ईरान पहले हमला करता है तो रूबियो ने हमले की संभावना से इनकार नहीं किया है। जापान के कुछ हिस्सों में बुधवार को भी भीषण गर्मी रही। फुकुओका प्रिफेक्चर में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। फुकुओका हवाई अड्डे पर तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस था। पश्चिमी जापान के कई अन्य स्थानों पर भी तापमान 39 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। जुलाई के अंत में आए शक्तिशाली भूकंप से उबरने की कोशिश कर रहे कुमामोतो प्रिफेक्चर के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी रही। यात्सुशिरो शहर में दिन का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री और कुमामोतो शहर में 38.9 डिग्री रहा। बुधवार को जापान के 47 में से 37 प्रिफेक्चरों में तापघात की चेतावनी जारी की गई। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक का सेवन करना चाहिए। तूफान सोदेल जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों अमामी और ओकिनावा से दूर जा रहा है, लेकिन तूफान का असर लंबे समय तक देखा जा सकता है। भारी वर्षा के कारण निचले इलाकों में भूस्खलन, बाढ़ और नदियों में उफान सहित ऊंची लहरों और तेज हवाओं से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ऐसा लगता है कि अमामी और ओकिनावा तूफान के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में अब भी वर्षा बादल छाए हुए हैं। बृहस्पतिवार दोपहर तक के 24 घंटों में ओकिनावा प्रिफेक्चर में अधिकतम 120 मिलीमीटर और कागुशिमा प्रिफेक्चर के अमामी क्षेत्र में 100 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। प्रचंड हवाओं की भी आशंका है। अमामी और ओकिनावा क्षेत्रों में हवाओं की अधिकतम गति 83 किलोमीटर प्रति घंटा और हवाओं के झोंकों की रफ्तार 126 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की आशंका है। ओकिनावा प्रिफेक्चर में लहरों की ऊंचाई 7 मीटर और अमामी क्षेत्र में 6 मीटर तक होने की आशंका है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जापान सरकार ने बुधवार को नई योजनाओं का एक पैकेज तैयार किया। इन योजनाओं में एक वैकल्पिक पाइपलाइन के निर्माण के लिए सहायता कार्यक्रम शामिल किया गया है, जिससे जापान को हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजरने की बजाय नए रास्ते से कच्चे तेल की खरीद करने में मदद मिलेगी। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाई ने जून में पश्चिम

0: एशिया की स्थिति को देखते हुए ऊर्जा सुरक्षा हेतु योजनाओं का एक व्यापक पैकेज तैयार करने के लिए सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया था। पाइपलाइन निर्माण के लिए सहायता कार्यक्रम के अलावा सरकार कच्चे तेल के भंडार के लिए एक पहल शुरू करने की भी योजना बना रही है, जिसका उपयोग नेफ्ता के उत्पादन के लिए किया जाएगा। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के तहत सरकार परमाणु ऊर्जा का अधिकतम उपयोग और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा सरकार अगली पीढ़ी के पतले और लचीले पेरोवस्काइट सौर ऊर्जा सेल, भूताप और अक्षय ऊर्जा के अन्य स्रोतों के लिए औद्योगिक आधार तैयार करेगी। सरकार डेटा केंद्रों में बिजली की बढ़ती मांग से निपटने के लिए ऊर्जा कुशल चिप्स पर भी शोध को बढ़ावा देगी। सरकार पावर एशिया पहल के ढांचे के माध्यम से तेल भंडार को बढ़ाने के लिए अन्य देशों से विस्तारित सहयोग का आह्वान करेगी। गौरतलब है कि पावर एशिया पहल के तहत एशियाई और अन्य देशों को वित्तीय सहायता दी जाती है। जापान सरकार किसानों और मछुआरों को नकद सहायता देने पर विचार कर रही है, ताकि उनके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों पर उपभोग कर में कमी के प्रभाव को कम किया जा सके। सरकार ने अगले साल अप्रैल से 2 वर्ष के लिए खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर को घटाकर 1% करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में उपभोग कर की दर आमतौर पर 10% है, लेकिन खाद्य और पेय पदार्थों पर ये 8% है। सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वो प्रभावित किसानों और मछुआरों को उनके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले उपभोग कर की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना बना रही है। सर्वदलीय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा परिषद ने चिंता व्यक्त की थी कि कृषि और मत्स्य पालन में लगी छोटी व मझौली कंपनियों को बढ़ते वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण ये है कि उन्हें उपकरण और अन्य सामग्री की खरीद पर पहले की तरह ही 10% उपभोग कर का भुगतान करना होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि वो रेस्तराओं पर कर कटौती के प्रभावों पर नजर रखेगी। बाहर खाना खाने पर उपभोग कर 10% ही रहेगा, लेकिन टेकआउट पर इसे घटाकर 1% कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि वो रेस्तराओं को उत्पादकता बढ़ाने और टेकआउट सुविधा प्रदान करने में मदद करने पर विचार करेगी। अधिकारी आगामी महीनों में इसकी बारीकियों पर काम करेंगे, ताकि इसे अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष के बजट के मसौदे में शामिल किया जा सके।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीकी मीडिया केंद्र एक्सियोस के अनुसार विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में बताया कि फिलहाल अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू करने की कोई संभावना नहीं है। और जापान के कुछ हिस्सों में बुधवार को भी भीषण गर्मी रही। फुकुओका प्रीफेक्चर में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। और इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 26वें पाठ में किसी चीज की कई विशेषताएं एक साथ बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस के निवासियों मिया और काइतो और मकान मालकिन हारूजी के साथ ओहानामी करने एक उद्यान में आई है।
0: जापान के लोग वसंत ऋतु में खूबसूरत गुलाबी चेरी के फूल यानी साकुरा देखने उद्यानों में जाते हैं। इस प्रथा को ओहानामी कहते हैं। लोग पेड़ों तले टहलते हैं, उनके नीचे बैठकर खाते पीते हैं। ताम भी अपने दोस्तों के साथ चेरी के एक पेड़ के नीचे दरी बिछाकर बैठी है।
1: तो आइए सुनते हैं 26वें पाठ की बातचीत।
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: काइतो ने खाने के डिब्बे निकालकर दरी के बीच में रखते हुए कहा,
2: ओबेंटो दायो।
0: ये हैं खाने के डिब्बे।
2: बोकु गा त्सुकत्ता दा। दोज़ो।
0: मैंने बनाए हैं। लो।
1: मिया रंग बिरंगा खाने का डिब्बा देखकर बहुत प्रभावित हो गई। उसने कहा,
3: कीरे।
1: कितना सुंदर है।
0: ताम ने भी प्रशंसा की,
3: सुगोई।
1: वाह।
3: इतादाकिमासु।
1: शुक्रिया।
0: फिर ताम ने जापानी ऑमलेट से शुरुआत की।
3: कोनो तमागोयाकी अमाकुते ओइशी देसु।
1: ये जापानी ऑमलेट मीठा और स्वादिष्ट है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
4: काइतो वा होंतो नी ryōri ga jōzu da ne।
1: काइतो, तुम सचमुच बहुत अच्छा खाना पकाते हो।
0: तो काइतो ने जवाब दिया,
2: बोकु शेफु नी नारिताई दा।
0: मैं शेफ बनना चाहता हूँ।
1: ये सुनकर मिया ने कहा,
4: इने।
1: ये तो अच्छी बात है।
0: लगता है काइतो बहुत प्रतिभाशाली है।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: कोनो तमागोयाकी अमाकुते ओइशी देसु।
1: यानी ये जापानी ऑमलेट मीठा और स्वादिष्ट है। ये वाक्य सीखकर आप किसी चीज की कई विशेषताएं एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: कोनो तमागोयाकी
0: का अर्थ है ये जापानी ऑमलेट।
5: तमागोयाकी
0: का मतलब है जापानी ऑमलेट और ये खाने के डिब्बे में शामिल किया जाने वाला एक आम व्यंजन है।
1: इसे बनाने के लिए अंडों को जायकेदार रसे और चीनी के साथ फेंटते हैं और पके हुए अंडे की पतली परतों को लपेटकर मोटा और नर्म ऑमलेट तैयार करते हैं।
5: अमाकुते
0: बना है ई विशेषण
5: अमाई
0: से, जिसका अर्थ है मीठा, और
5: ओइशी
0: का मतलब है स्वादिष्ट।
1: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी चीज की विशेषताएं बताने के लिए दो या अधिक विशेषणों को जोड़ सकते हैं। अगर आज के मुख्य वाक्य की तरह पहला विशेषण ई विशेषण हो तो उसके अंत में लगे ई को हटाकर
5: कुते
1: लगाते हैं और उसके बाद अगला विशेषण जोड़ते हैं।
0: जैसे इस वाक्य में अमाई से बना है
5: अमाकुते
0: और उसके बाद लगा है
5: ओइशी,
0: तो बन गया
5: अमाकुते ओइशी।
1: तो सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: अमाकुते ओइशी देस। कोनो तमागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला किसी उद्यान के बारे में अपने विचार बता रही है।
6: उएनो कोएन दो देशता का?
7: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देस।
1: अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले पुरुष ने पूछा,
6: उएनो कोएन दो देशता का?
0: उएनो पार्क कैसा लगा?
1: यहाँ
5: उएनो कोएन
1: का अर्थ है उएनो पार्क। यह उद्यान टोक्यो में है और बहुत बड़ा है.
5: どうでしたか?
1: का मतलब है कैसा लगा. यह किसी पुरानी बात के बारे में विचार पूछने का तरीका है.
0: महिला ने उत्तर दिया,
4: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देसु.
1: बड़ा, सुंदर और बहुत अच्छा था.
5: हिरोकुते
0: बना है ई विशेषण
5: हिरोई
0: से, जिसका अर्थ है बड़ा. विशेषण के इस रूप का उपयोग अगला विशेषण जोड़ने के लिए किया जाता है.
1: उसके बाद आया है शब्द
5: किरेदे,
1: जो ना विशेषण
5: किरेना
1: यानी सुंदर से बना है. ना विशेषण के बाद एक और विशेषण जोड़ने के लिए अंत का ना हटाकर
5: दे
1: लगाते हैं.
0: और
5: तोतेमो योकत्ता देसु
0: का अर्थ है बहुत अच्छा था. तो इसे सुनिए और अभ्यास कर लीजिए.
5: हिरोकुते किरेई दे, हिरोकुते किरेई दे, तोतेमो योकत्ता देसु.

0: ये रेल सेवा के बारे में आपकी राय पूछी है। आप कहना चाहते हैं कि जापानी रेलगाड़ियाँ समय की पाबंद और सुविधाजनक हैं। समय की पाबंद कहने के लिए जापानी शब्द है
1: सेकाकुना
0: और सुविधाजनक के लिए जापानी शब्द है।
1: बेंडीना।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: सेकाकुदे बेंडी देसुने।
3: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो काइतो की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
4: दोज़ो।
0: आज के पाठ में
1: दोज़ो
0: का मतलब है लो। इस शब्द का कई तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, जैसे किसी को खाने की चीज देते समय या कुछ करने की अनुमति देने के लिए। कोई चीज पकड़ाते समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
3: तो सुनिए और दोहराइए।
1: दोज़ो।
0: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
4: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
5: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
6: カイトは本当に料理が上手だね。
4: 僕、シェフになりたいんだ。
6: いいね。
7: ハルさんの知恵袋。
3: अब हम लेकर आए हैं अंश, हारू जी की सलाह। आज हम बताएंगे ओहानामी यानी चेरी के फूल निहारने की प्रथा के बारे में।
0: जापान में चेरी के फूल यानी साकुरा लगभग मार्च से मई के महीने तक जापान के दक्षिण से लेकर उत्तर की दिशा में खिलते हैं।
3: लोग ये जानने के लिए मौसम पूर्वानुमान सुनते रहते हैं कि ये फूल कब कहाँ खिल रहे हैं और कितने प्रतिशत खिल चुके हैं। उस जानकारी के आधार पर लोग ओहानामी करने की योजना बनाते हैं।
0: ओहानामी के लिए लोग अपने घर के पास के बाग बगीचों में या सड़क किनारे लगे चेरी के पेड़ देखने तो जाते ही हैं। साथ ही इन फूलों के लिए प्रसिद्ध दूर के क्षेत्रों में जाने वाले लोग भी कम नहीं है।
3: उएनो पार्क और शिंजुकु ग्योएन राष्ट्रीय बाग ओहानामी के लिए टोक्यो के लोकप्रिय स्थलों में से है। इसके अलावा सुमिदा नदी और मेगुरो नदी के किनारे लगे पेड़ भी बहुत सारे लोगों को आकर्षित करते हैं।
0: कई जगहों पर रात में पेड़ों पर लाइटें भी लगाई जाती हैं, जिससे रात को भी ओहानामी का आनंद लिया जा सके।
3: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम रामेन नूडल्स की एक लोकप्रिय दुकान में जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। जापानी हुकूमत ने मशरक वस्ता की सूरत हाल के तनाजुर में तवानाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए बुध को नए मनसूबों का एक पैकेज मुरतब किया है। इन मनसूबों में एक मुतबादल पाइपलाइन की तामीर के लिए इमदादी प्रोग्राम शामिल है जो जापान को अपनाए हुरमत से गुजरे बगैर खाम तेल हासिल करने के काबिल बनाएगा। जून में जापान की वज़ीर आज़म ताकाइची सानाए ने सरकारी अहदेदारों को मशरक वस्ता की सूरत हाल के जवाब में तवानाई सलामती के मनसूबों के लिए एक जामे पैकेज तैयार करने की हदायत की थी। पाइपलाइन की तामीर के लिए इमदादी प्रोग्राम के साथ साथ हुकूमत खाम तेल के एक जखीरे के लिए भी इकदाम करने का इरादा रखती है जिसे नफ्था बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फॉसल फ्यूल पर इन्हिसार कम करने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत हिफाजती इकदाम यकीनी बनाते हुए जोहरी तवानाई के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर देगी। जदीद तरीन पतले और लचकदार पेरोवस्काइट सोलर सेल्स के साथ साथ जियो थर्मल समेत तवानाई के दीगर काबिल तजदीद ज़राए के लिए सनती बुनियादें तैयार करने के मनसूबे भी तश्कील दिए जाएंगे। वो डेटा सेंटरों में बिजली की बढ़ती हुई तलब से निमटने के लिए कम तवानाई इस्तेमाल करने वाली चिप्स पर भी गौर कर रहे हैं। हुकूमत पावर एशिया फ्रेमवर्क के तहत तेल के जखायर को बढ़ाने के लिए दूसरे ममालिक से वसी ताउन का मुतालबा भी करेगी जो एशिया और दीगर जगहों के ममालिक को माली मदद फ्राहम करता है। जापानी हुकूमत किसानों और माही गिरों को नकद रकूम अदा करने पर गौर कर रही है ताकि उनकी फरोख्त होने वाली पैदावार पर सारिफ टैक्स में कमी के असरात को कम किया जा सके। हुकूमत ने अगले साल अप्रैल से 2 साल के लिए खुराक पर सारिफ टैक्स को कम करके 1% करने का फैसला किया है। इस वक्त टैक्स की अमूमी शरह 10% है लेकिन खाने पीने की अशिया पर यह 8% है। हुकूमत ने मंगल के रोज ऐलान किया कि वो मुतासरा किसानों और माही गिरों

0: को नकद रकम देने का इरादा रखती है ताकि वह सप्लाई अशिया की खरीदारी के वक्त अदा किए जाने वाले सारिफ टैक्स की कमी को पूरा कर सकें। गैर जमाती नेशनल कौंसिल बराए समाजी तहफ्फुज़ ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया था कि खेती बाड़ी और माही गिरी में छोटे और दरमियाने दर्जे के ऑपरेटर्स को ज्यादा माली बोझ का सामना करना पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि उन्हें अपने आलात और दीगर साजो सामान की खरीदारी पर पहले की तरह 10% सारिफ टैक्स अदा करना होगा। हुकूमत ने यह भी कहा है कि वो टैक्स कटौती के असरात के हवाले से रेस्तरानों पर भी नजर रखेगी। घर से बाहर रेस्तरानों वगैरह में ताम पर सारिफ टैक्स 10% रहेगा, लेकिन खाना बाहर ले जाने पर ये 1% रह जाएगा। हुकूमत ने कहा है कि वो खाने पीने का कारोबार चलाने वालों की पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने और टेकआउट पेश करने में उनकी मदद करने पर गौर करेगी। हुकूमत अप्रैल में शुरू होने वाले आइंदा माली साल के मुसवदा बजट में मस्कूरा मामलात को शामिल करने के लिए आने वाले महीनों में तफसीलात पर काम करेंगे।
1: اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ ایک امریکی میڈیا ادارے کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مبینہ طور پر حال ہی میں متعدد اتحادی ممالک کے وزرائے خارجہ کو بتایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے فی الوقت ایران کے خلاف نئے حملے شروع کیے جانے کا امکان نہیں۔ اور جاپان کے کچھ حصوں میں ایک اور دن خطرناک گرمی پڑی ہے۔ فکوکا پریفیکچر میں بدھ کے روز درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے nhk.jp/اردو۔

0: ったんだ。どうぞ。
1: 綺麗、すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。
2: カイトは本当に料理が上手だね。
0: 僕シェフになりたいんだ。
2: いいね。
3: आज के सबक का कलीदी जुमला है, ये जापानी आमलेट मीठा और मजेदार है.
1: この卵焼き甘くて美味しいです。
3: अगर आप इसे याद कर लें, तो इसे इस्तेमाल करते हुए एक से ज़ायद तासीरात का इजहार कर सकते हैं.
4: कोनो तमागोयाकी की मायनी है ये जापानी आमलेट. तमागोयाकी या जापानी तर्ज का आमलेट खाने के डिब्बे, जिसे हम टिफिन भी कह सकते हैं, में तकरीबन लाजमी शामिल होता है. इसे बनाने के लिए अंडों में शक्कर शामिल करके फेंटा जाता है, फिर फ्राई पैन में उसकी पतली तह लगाते हुए रोल किया जाता है. हतमी तौर पर यह ब्लॉक की शक्ल का होता है. अगला लफ्ज़ अमाकते, दरअसल ई इसमें सिफत अमाई यानी मीठा से बना है, और ओइशी के मायनी है मज़ेदार. आज का नुक्ता दो या जायद इसमें सिफत को जोड़कर अपने तासुर का इजहार करने से मुतल्लिक है. ई इसमें सिफत को जोड़ने के लिए उसके आखिरी ई को हटाकर कुते लगाना होगा. आज के मकालमे में अमाई और ओइशी मिलते हैं तो अमाई तब्दील होकर अमकते बनता है, और उसके बाद ओइशी लगकर अमकते ओइशी बनता है.
3: तो सामीन सुनिए और दोहराइए.
5: अमकते ओइशी देस. कोनो तमागो याकी अमकते ओइशी देस.
3: जी सामीन, उम्मीद है आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा.
4: अब एक पार्क से मुतालिक तासुरात का इजहार करने वाला एक मकालमा सुनिए.
6: उएनो कोएन दो देशता का?
7: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देस.
4: अब इस मकालमे की तशरीह.
6: उएनो कोएन दो देशता का?
3: उएनो पार्क कैसा था?
4: उएनो कोएन यानी उएनो पार्क, ये टोक्यो में वाकई एक बड़े पार्क का नाम है, और दो देशता का यानी कैसा था, ये तासुर पूछने का एक अंदाज है.
7: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देस.
3: वसी और खूबसूरत और बहुत अच्छा था.
4: हिरोकुते, ई इसमें सिफत हिरोई यानी वसी की अगले इसमें सिफत से जुड़ने वाली शक्ल है. किरेई दे, ना इसमें सिफत किरेना यानी खूबसूरत की अगले इसमें सिफत से जुड़ने वाली शक्ल है. ना इसमें सिफत को अगले इसमें सिफत से जोड़ने के लिए आखिरी ना को दे में तब्दील किया जाता है. तोतेमो योकत्ता देस का मतलब है बहुत अच्छा था.
3: तो सामीन सुनिए और दोहराइए.
5: हिरोकुते हिरोकुते किरेई दे हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देस.
4: अब तासुर के इजहार के कुछ और अल्फाज के साथ मश्क. फर्ज करें कि कोई शख्स आपको बिल्ली की शक्ल की कोई सजावटी चीज तोहफे में देता है. आप कहना चाहते हैं छोटा और प्यारा है. छोटा की जापानी है
5: चीसाई, चीसाई,
4: और प्यारा को कहते हैं
5: कवाई, कवाई,
4: और आखिर में मुखातिब से अपनी बात की तस्दीक के लिए ने लगाएं. सामीन कोशिश करें.
7: चीसकते कवाई देसने, चीसकते कवाई देसने.
4: अब फर्ज करें कि किसी ने जापान की ट्रेनों से मुतालिक आपका तासुर पूछा है. आप कहना चाहते हैं ये वक्त की पाबंद और बासहूलत है. वक्त की पाबंद यानी
5: सेकाकुना, सेकाकुना,
4: और बासहूलत
5: बेंडीना, बेंडीना.
4: तो आप किस तरह कहेंगे?
6: सेकाकुदे बेंडी देसने, सेकाकुदे बेंडी देसने.
3: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा.
4: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर. आज के लफ्ज मकालमे में कायतों ने खाने का डब्बा निकालने के बाद इस्तेमाल किया है.
0: दोजो
4: आज के मकालमे की तरह खाना या कोई और चीज पेश करते वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा यह किसी काम की इजाजत देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
3: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए.
8: दोजो,
9: दोजो,
0: दोजो.
3: सामीन, अब आपकी बारी

0: तो सुनिए और दोहराइए।
1: दोजो।
2: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं, उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपने तासुरात का इजहार करती है।
3: ओ बेंटो दा यो, बुकु गा त्सुकुत्तान दा, दोजो।
4: किरे, सुगोई, इतादाकिमास। この卵焼き、甘くて美味しいです。
5: カイトは本当に料理が上手だね。
3: 僕、シェフになりたいんだ。
5: いいね。
6: ハルさんの知恵袋。
0: अब हारू सान की संबील का कॉर्नर। आज का मौजू है ओहानामी, यानी चेरी के फूलों का नजारा।
2: हिरा, आप जापान आकर ओहानामी से तो यकीनन लुत्फ़अंदोज़ हुई होंगी।
0: जी यकीनन, मौसम बहार में खूबसूरत गुलाबी फूलों से लदे चेरी के दरख्तों के साथ चहलकदमी करना और उनके नीचे बैठकर खाना पीना बहुत पुरलुत्फ होता है।
2: चेरी के फूल मार्च से मई तक जुनूबी इलाकों से शिमाली इलाकों की जानिब खिलते जाते हैं। मुल्क भर के लोग अपने अपने इलाके के फूल खिलने के मुतवक्के वक्त से मुतालिक महकमे मौसमियात की पेशगोई और खिलने के मौजूदा मरहले के ऐलानात के मुंतजर रहते हैं, ताकि इसी लिहाज से अपनी अपनी पिकनिक की मनसूबाबंदी कर सकें।
0: तो ज्यादातर लोग ओहानामी के लिए कहाँ जाते हैं?
2: कई लोग अपने अपने इलाके के बागात या सड़कों के किनारों पर लगे चेरी के दरख्तों पर फूलों के नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ओहानामी के लिए मशहूर मकामात का रुख करते हैं। टोक्यो में उएनो पार्क और शिंजुकू ग्योएन नेशनल पार्क मकबूल मकामात हैं। इनके अलावा दरियाए सुमीदा और दरियाए मेगुरो के किनारे लगे चेरी के दरख्त भी ओहानामी के लिए मकबूल हैं। रात के वक्त बर्फी कुमकुमों से आरास्ता चेरी के दरख्त भी देखने से ताल्लुक रखते हैं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 26 अगस्त बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला जैन और वायला कवानो से सुने समाचार। एक अमेरिकी मीडिया केंद्र एक्सियोस के अनुसार विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में कई सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों को बताया कि फिलहाल अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू करने की कोई संभावना नहीं है। एक्सियोस ने मंगलवार को एक अमेरिकी अधिकारी और एक अन्य स्रोत के हवाले से यह खबर दी। यह खबर ऐसे समय आई है जब अमेरिका ने सोमवार को ईरान के खिलाफ व्यापक आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की। ऐसा लगता है कि अब अमेरिका ईरान पर सैन्य हमलों की बजाय आर्थिक दबाव बढ़ाने जा रहा है। एक्सियोस की खबर के अनुसार रूबियो ने संकेत दिया है कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाजों पर अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी के साथ साथ नए प्रतिबंधों के माध्यम से ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। खबर में एक अन्य अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ये नीति कम से कम नवंबर में होने वाले अमरीकी मध्यावधि चुनावों के बाद तक जारी रहने की उम्मीद है, जिसके बाद एक नए सैन्य अभियान पर फिर से विचार किया जा सकता है। खबर में कहा गया है कि यह एक और संकेत है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध से तंग आ चुके हैं और चाहते हैं कि यह कम से कम अभी के लिए समाप्त हो जाए। इस बीच इसमें यह भी कहा गया है कि अगर ईरान पहले हमला करता है तो रूबियो ने हमले की संभावना से इनकार नहीं किया है। जापान के कुछ हिस्सों में बुधवार को भी भीषण गर्मी रही। फुकुओका प्रिफेक्चर में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। फुकुओका हवाई अड्डे पर तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस था। पश्चिमी जापान के कई अन्य स्थानों पर भी तापमान 39 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। जुलाई के अंत में आए शक्तिशाली भूकंप से उबरने की कोशिश कर रहे

यामामोतो प्रिफेक्चर के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी रही। यात्सुशिरो शहर में दिन का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री और कुमामोतो शहर में 38.9 डिग्री रहा। बुधवार को जापान के 47 में से 37 प्रिफेक्चरों में तापघात की चेतावनी जारी की गई। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक का सेवन करना चाहिए। तूफान सोदेल जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों अमामी और ओकिनावा से दूर जा रहा है, लेकिन तूफान का असर लंबे समय तक देखा जा सकता है। भारी वर्षा के कारण निचले इलाकों में भूस्खलन, बाढ़ और नदियों में उफान सहित ऊंची लहरों और तेज हवाओं से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ऐसा लगता है कि अमामी और ओकिनावा तूफान के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में अब भी वर्षा बादल छाए हुए हैं। बृहस्पतिवार दोपहर तक के 24 घंटों में ओकिनावा प्रिफेक्चर में अधिकतम 120 मिलीमीटर और कागुशिमा प्रिफेक्चर के अमामी क्षेत्र में 100 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। प्रचंड हवाओं की भी आशंका है। अमामी और ओकिनावा क्षेत्रों में हवाओं की अधिकतम गति 83 किलोमीटर प्रति घंटा और हवाओं के झोंकों की रफ्तार 126 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की आशंका है। ओकिनावा प्रिफेक्चर में लहरों की ऊंचाई 7 मीटर और अमामी क्षेत्र में 6 मीटर तक होने की आशंका है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जापान सरकार ने बुधवार को नई योजनाओं का एक पैकेज तैयार किया। इन योजनाओं में एक वैकल्पिक पाइपलाइन के निर्माण के लिए सहायता कार्यक्रम शामिल किया गया है, जिससे जापान को हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजरने की बजाय नए रास्ते से कच्चे तेल की खरीद करने में मदद मिलेगी। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाई ने जून में पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए ऊर्जा सुरक्षा हेतु योजनाओं का एक व्यापक पैकेज तैयार करने के लिए सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया था। पाइपलाइन निर्माण के लिए सहायता कार्यक्रम के अलावा सरकार कच्चे तेल के भंडार के लिए एक पहल शुरू करने की भी योजना बना रही है, जिसका उपयोग नेफ्ता के उत्पादन के लिए किया जाएगा। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के तहत सरकार परमाणु ऊर्जा का अधिकतम उपयोग और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा सरकार अगली पीढ़ी के पतले और लचीले पेरोवस्काइट सौर ऊर्जा सेल, भूताप और अक्षय ऊर्जा के अन्य स्रोतों के लिए औद्योगिक आधार तैयार करेगी। सरकार डेटा केंद्रों में बिजली की बढ़ती मांग से निपटने के लिए ऊर्जा कुशल चिप्स पर भी शोध को बढ़ावा देगी। सरकार पावर एशिया पहल के ढांचे के माध्यम से तेल भंडार को बढ़ाने के लिए अन्य देशों से विस्तारित सहयोग का आह्वान करेगी। गौरतलब है कि पावर एशिया पहल के तहत एशियाई और अन्य देशों को वित्तीय सहायता दी जाती है। जापान सरकार किसानों और मछुआरों को नकद सहायता देने पर विचार कर रही है, ताकि उनके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों पर उपभोग कर में कमी के प्रभाव को कम किया जा सके। सरकार ने अगले साल अप्रैल से 2 वर्ष के लिए खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर को घटाकर 1% करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में उपभोग कर की दर आमतौर पर 10% है, लेकिन खाद्य और पेय पदार्थों पर ये 8% है। सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वो प्रभावित किसानों और मछुआरों को उनके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले उपभोग कर की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना बना रही है। सर्वदलीय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा परिषद ने चिंता व्यक्त की थी कि कृषि और मत्स्य पालन में लगी छोटी व मझौली कंपनियों को बढ़ते वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण ये है कि उन्हें उपकरण और अन्य सामग्री की खरीद पर पहले की तरह ही 10% उपभोग कर का भुगतान करना होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि वो रेस्तराओं पर कर कटौती के प्रभावों पर नजर रखेगी। बाहर खाना खाने पर उपभोग कर 10% ही रहेगा, लेकिन टेकआउट पर इसे घटाकर 1% कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि वो रेस्तराओं को उत्पादकता बढ़ाने और टेकआउट सुविधा प्रदान करने में मदद करने पर विचार करेगी। अधिकारी आगामी महीनों में इसकी बारीकियों पर काम करेंगे, ताकि इसे अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष के बजट के मसौदे में शामिल किया जा सके।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीकी मीडिया केंद्र एक्सियोस के अनुसार विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में बताया कि फिलहाल अमरीका द्वारा ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू करने की कोई संभावना नहीं है। और जापान के कुछ हिस्सों में बुधवार को भी भीषण गर्मी रही। फुकुओका प्रीफेक्चर में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। और इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 26वें पाठ में किसी चीज की कई विशेषताएं एक साथ बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस के निवासियों मिया और काइतो और मकान मालकिन हारूजी के साथ ओहानामी करने एक उद्यान में आई है।
0: जापान के लोग वसंत ऋतु में खूबसूरत गुलाबी चेरी के फूल यानी साकुरा देखने उद्यानों में जाते हैं। इस प्रथा को ओहानामी कहते हैं। लोग पेड़ों तले टहलते हैं, उनके नीचे बैठकर खाते पीते हैं। ताम भी अपने दोस्तों के साथ चेरी के एक पेड़ के नीचे दरी बिछाकर बैठी है।
1: तो आइए सुनते हैं 26वें पाठ की बातचीत।
2: ओ बेंटो दा यो, बुकु गा त्सुकुत्तान दा, दोज़ो।
3: किरे, सुगोई, इतादाकिमास। कोनो तामागो याकी, अमाकुते ओइशी देस।
4: काइतो वा, होंतो नी ल्योरी गा जोज़ु दा ने।
2: बुकु, शेफु नी नारितायिन दा।
4: ई ने।
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: काइतो ने खाने के डिब्बे निकालकर दरी के बीच में रखते हुए कहा,
2: ओ बेंटो दा यो।
0: ये हैं खाने के डिब्बे।
2: बुकु गा त्सुकुत्तान दा, दोज़ो।
0: मैंने बनाए हैं, लो।
1: मिया रंग बिरंगा खाने का डिब्बा देखकर बहुत प्रभावित हो गई। उसने कहा,
3: किरे,
1: कितना सुंदर है।
0: ताम ने भी प्रशंसा की,
3: सुगोई,
1: वाह।
3: इतादाकिमास,
1: शुक्रिया।
0: फिर ताम ने जापानी ऑमलेट से शुरुआत की।
3: कोनो तामागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
1: ये जापानी ऑमलेट मीठा और स्वादिष्ट है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
4: काइतो वा होंतो नी ल्योरी गा जोज़ु दा ने।
1: काइतो, तुम सचमुच बहुत अच्छा खाना पकाते हो।
0: तो काइतो ने जवाब दिया,
2: बुकु शेफु नी नारितायिन दा।
0: मैं शेफ बनना चाहता हूँ।
1: ये सुनकर मिया ने कहा,
4: ईने,
1: ये तो अच्छी बात है।
0: लगता है काइतो बहुत प्रतिभाशाली है।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: कोनो तामागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
1: यानी ये जापानी ऑमलेट मीठा और स्वादिष्ट है। ये वाक्य सीखकर आप किसी चीज की कई विशेषताएं एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: कोनो तामागो याकी
0: का अर्थ है ये जापानी ऑमलेट।
5: तामागो याकी
0: का मतलब है जापानी ऑमलेट और ये खाने के डिब्बे में शामिल किया जाने वाला एक आम व्यंजन है।
1: इसे बनाने के लिए अंडों को जायकेदार रसे और चीनी के साथ फेंटते हैं और पके हुए अंडे की पतली परतों को लपेटकर मोटा और नर्म ऑमलेट तैयार करते हैं।
5: अमाकुते
0: बना है ई विशेषण
5: अमाई
0: से, जिसका अर्थ है मीठा, और
5: ओइशी
0: का मतलब है स्वादिष्ट।
1: इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी चीज की विशेषताएं बताने के लिए दो या अधिक विशेषणों को जोड़ सकते हैं। अगर आज के मुख्य वाक्य की तरह पहला विशेषण ई विशेषण हो तो उसके अंत में लगे ई को हटाकर
5: कुते
1: लगाते हैं और उसके बाद अगला विशेषण जोड़ते हैं।
0: जैसे इस वाक्य में अमाई से बना है
5: अमाकुते
0: और उसके बाद लगा है
5: ओइशी,
0: तो बन गया
5: अमाकुते ओइशी।
1: तो सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: अमाकुते ओइशी देस। कोनो तामागो याकी अमाकुते ओइशी देस।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला किसी उद्यान के बारे में अपने विचार बता रही है।
6: उएनो कोएन दो देशता का?
7: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकात्ता देस।
1: अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले पुरुष ने पूछा,
6: उएनो कोएन दो देशता का?
0: उएनो पार्क कैसा लगा?
1: यहाँ
5: उएनो कोएन
1: का अर्थ है उएनो पार्क। यह उद्यान टोक्यो में है और बहुत बड़ा है।
5: どうでしたか?
1: का मतलब है कैसा लगा? यह किसी पुरानी बात के बारे में विचार पूछने का तरीका है।
0: महिला ने उत्तर दिया,
7: हिरोकुते किरेई दे, तोतेमो योकत्ता देसु।
1: बड़ा, सुंदर और बहुत अच्छा था।
5: हिरोकुते
0: बना है ई विशेषण
5: हिरोई
0: से, जिसका अर्थ है बड़ा। विशेषण के इस रूप का उपयोग अगला विशेषण जोड़ने के लिए किया जाता है।
1: उसके बाद आया है शब्द
5: किरेदे,
1: जो ना विशेषण
5: किरेना
1: यानी सुंदर से बना है। ना विशेषण के बाद एक और विशेषण जोड़ने के लिए अंत का ना हटाकर
5: दे
1: लगाते हैं।
0: और
5: तोतेमो योकत्ता देसु
0: का अर्थ है बहुत अच्छा था। तो इसे सुनिए और अभ्यास कर लीजिए।
5: हिरोकुते किरेई दे, हिरोकुते किरेई दे, तोतेमो योकत्ता देसु।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको बिल्ली की प्यारी सी मूर्ति उपहार में मिली है। आप बोलना चाहते हैं कि वो छोटी और प्यारी है। छोटी को जापानी भाषा में कहेंगे
5: चीसाई
1: और प्यारी को
5: कवाई।
1: वाक्य के अंत में ने लगाकर आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की आशा कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए।
3: चीसकते कवाई देसने।
0: अब मान लीजिए किसी ने जापान की रेल सेवा के बारे में आपकी राय पूछी है। आप कहना चाहते हैं कि जापानी रेलगाड़ियां समय की पाबंद और सुविधाजनक हैं। समय की पाबंद कहने के लिए जापानी शब्द है
5: सेकाकुना,
0: और सुविधाजनक के लिए जापानी शब्द है
5: बेंडीना।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
8: सेकाकु दे बेंडी देसु ने।
1: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो काइतो की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: दोज़ो।
0: आज के पाठ में
5: दोज़ो
0: का मतलब है लो। इस शब्द का कई तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, जैसे किसी को खाने की चीज देते समय या कुछ करने की अनुमति देने के लिए। कोई चीज पकड़ाते समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
5: दोज़ो।
0: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
9: ハルさんの知恵袋。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश, हारू जी की सलाह।

0: प्रसिद्ध दूर के क्षेत्रों में जाने वाले लोग भी कम नहीं हैं।
1: उएनो पार्क और शिंजुकु ग्योएन राष्ट्रीय बाग ओहानामी के लिए टोक्यो के लोकप्रिय स्थलों में से हैं। इसके अलावा सुमिदा नदी और मेगुरो नदी के किनारे लगे पेड़ भी बहुत सारे लोगों को आकर्षित करते हैं।
0: कई जगहों पर रात में पेड़ों पर लाइटें भी लगाई जाती हैं, जिससे रात को भी ओहानामी का आनंद लिया जा सके।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम रामेन नूडल्स की एक लोकप्रिय दुकान में जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

और जापान के कुछ हिस्सों में एक और दिन खतरनाक गर्मी पड़ी है। फुकुओका प्रीफेक्चर में बुध के रोज दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज कर गया। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए NHK.JP/Urdu।